0: पढ़ना है।
1: ओ ब्रेव एंड यंग वंस, यूनाइट इन वनेस, रिमूव ऑल जेलसी एंड एंगर और हेट्रेड अमंग अस एंड यूनाइट टुगेदर। वी आर नॉट टू डू बैड टू द वर्ल्ड, आवर ड्यूटी इज टू डू गुड फॉर द वर्ल्ड।
0: हमें